0: ये चीज से समझ ना चाहिए किसी की चाहिए ना कब आएगी शुआ
1: वे वे वे वे लुज़ यू लांडा राइन
2: 真真应个了，多斯玛多，侬这小桌椅，送个太年子穷哎。莫格里，莫西尼拉了，你做个拉面西么嗦？伊那三十多个。阿勒，莫西尼拉了，你做个拉面哈可么嗦？伊那阿拉了，年纪个，年纪个。
1: 쌤스 코에 차수네.
3: 아, 주시에 차수.